0: to overcome their weaknesses, their stiffness, and their restlessness. Simple but beneficial yoga exercises have had an excellent effect. Touched by the strength of yoga, these people could hardly wait for the evening to see and hear Swamiji.
1: कहाँ तितिक्षा की, कहाँ सहन करने की शक्ति है? अरे थे कट ध्यान करियो, थारा ध्यान तो पगों में है तो कि हमारा पग दुखने
2: सब योर बॉडी बी द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स
1: शिव व चैतन्य शिव जिनकी अन शक्ति गुण तत्व आदि की उत्पत्ति हुई और वही चैतन्य शिव स्वयंभू इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर विद्यमान है.
0: A new morning, a new yoga technique. Today, on schedule, it is Tratak, an excellent method for improving and balancing our emotional and mental functions.
2: Try to gaze on the flame carefully. Try to become one with the flame.
1: बहुत अच्छा है. तो इस प्रकार की तीन चार और अलग अलग क्रियाएं हैं और साथ ही साथ बिजी.
0: This is how our days in Jodhpur passed, between sadhana, humanitarian work, and satsang.
1: Atma hai.
0: Spontaneity is a precious Hindu quality. This poet composed an ode.

0: उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिध्य में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आप सबके सामने है।
1: टुडे विद अस लार्ज नंबर ऑफ अवर फॉरेन फ्रेंड्स आर ऑल्सो हियर। आई वुड लाइक टू एक्नोलेज देयर डेडिकेशन टू दिस इंस्टीट्यूशन। I welcome on behalf of all farmers here that looking to your devotion, it's really appreciable and it is amazing. It is beyond our thought and thinking

बाबा श्री देवपुरी जी महादेव की जय। विश्व वंदनीय भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी जी श्री माधवानंदपुरी सदगुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी जी श्री महेश्वरानंदपुरी सदगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं की जय। श्री रुद्राष्टकम्

इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम शिवार्पणमस्तु। बोलिए भगवान श्री अलखपुरीषा महादेव की जय। देव पुरीषा महादेव की जय। दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। निर्वाण षटकम्

बोलिए भगवान श्री अलखपुरीशा महादेव की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देवपुरीशा महादेव की जय, श्री माधवानंद भगवान की जय, विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य।

0: अलक पुरुषा महादेव की जय,
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान की
1: जय, जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद ब्रज गुरुदेव भगवान की
1: जय।

0: की जय।
1: श्री माधव कृष्ण भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की
0: जय।
1: आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी भगवान की
0: जय।
1: श्री काशी विश्वनाथ भगवान की
0: जय।
1: श्री गजानन जी भगवान की
0: जय।
1: सब ऋषि मुनि महात्मन की
0: जय। बोलिए भगवान श्री देवेश्वर महादेव की जय।
1: एक और
0: वेद सार शिवस्तवः

देव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे तदन्यो वरेण्यो नमान्यो न गम्यः।

0: इति श्रीमत्स्यशंकराचार्य विरचितं वेदसार शिवस्तव शिवार्पणमस्तु।
1: नारायण
0: भगवान की जय।
1: देव पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: अलक पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: श्री माधव कृष्ण
0: भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव
0: भगवान की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: ओम नमः
0: पार्वती पतये हर हर महादेव। सम

बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री आलकपुरी जी महादेव की जय। सत सनातन धर्म की जय।

0: भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।
0: सत्संग, सत मीन्स द ट्रूथ एंड संग विद द भक्तास। Those who come for satsang, it means who is the truth person, who is searching for the personality of the truth. And that's why all, only they can come who is the bhaktas. Sat Sang means living together, sitting together like brother, sisters, friends, bhakta, yogis, etc. We can read many holy books. There are many, many books, many, many.

शिशुतवेश परमदेव की जय। इंदुराम समरत सतगुरु स्वामी माधवरंजी भगवान की जय। विश्वगुरु महामदलेश्वर स्वामी महेश्वर नंशी योगी राज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

0: बाबा की जय।
1: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: अनंतपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: ओम
2: विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
0: की जय।

प्रतिम पूजामूलम् गुरुर्पदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुर्कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी महादेव की जय। धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल द डिवोटीज ऑफ श्री गुरुदेव, स्पिरिचुअल सीकर्स, प्रैक्टिशनर्स ऑफ डिफरेंट स्पिरिचुअल पाथ्स एज वेल एज योगा एंड डेली लाइफ, हियर इन दिस हॉल ऑल द भक्तास एंड राउंड द वर्ल्ड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गुड इवनिंग फ्रॉम वियना ऑस्ट्रिया, गुरुजी आश्रम। टुडे इज ए ब्यूटिफुल सब्जेक्ट एंड आई थिंक दिस सब्जेक्ट एवरीवन विल लाइक इट एंड मेनी टाइम मेनी भक्तास और प्रैक्टिशनर्स asked me a question about, not directly, but about this subject. They said what to do, how to do, when to do. And this subject is known as Mansik Puja. Mansik Puja means mentally a ceremony or seva to the East Devata. All of you know what means the East Devata, and who don't know will know now. East Devata is your personal God. So doesn't matter which God or which form of the God, which incarnation of the God or Gurudev you believe, when you are in far distance or let us say that divine incarnation is not with us, but we believe that is our Ishta Devata, Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, Rama, Hanumanji, Ganeshji, Jesus, Buddha, and many, Mahaprabhuji. Many of you know, according to the Guru Gita, but Mansik Puja is a very beautiful part of the meditation.

महादेवान की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुरी जी महादेव, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, दीप नारायण भगवान, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

आर यू हंग्री? बाबाजी सेड यस यस, बट हु आर यू? सो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, हु इज ही? एटलीस्ट ही वॉज ऑनेस्ट. देन साधु सेड, आई विल नॉट ईट योर फूड. आई विल नॉट ईट योर फूड. वह डाकू कहता है कि महाराज भूख लगी है, भोजन करना है. कि हाँ भैया भूख लगी है, भोजन करना है. लेकिन तुम कौन हो? वो सत्य बोला कि मैं एक डाकू हूं. तो बोला कि ऐसे पापी के हाथ का भोजन हम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ का अन्न खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी. I don't eat the food from such a sinner's hands. If I do, my intellect, my buddhi will be confused, lost, polluted. But he said, but you have to eat today. Master said, no, I will not eat. He said, okay, went away. But inside his, to made his sankalpa, in any case today, he have to eat my food. Maharaj ne kaha ki hum nahi lenge daku ke hath ka bhojan, chor ke hath ka bhojan, khane se buddhi bhrisht ho jayegi. Wo ghode pe chadh ke chala gaya daku, lekin man hi man mein vichar karta hai, chahe kuch bhi ho, baba ji ko aaj मेरा ही भोजन खिलाया जाएगा. महाराज ही वॉज सिटिंग इन मेडिटेशन एंड दैट डाकू बंडिट वेंट टू वन रेस्टोरेंट टू सम फार्मर हैव अ लिटिल रेस्टोरेंट ऑल्सो. व्हेन दे सो द बंडिट इज कमिंग, ओ गॉड, कैन यू इमेजिन? दे थॉट today was a Friday and the cat was crossing the way. He came down. They said, yes, sir, good morning. Good morning, sir. He said, okay. There is sitting one sadhu 2 kilometers far away under the tree. Take nice food and give him to eat. They said, yes, sir, we will do, but here is the money. They said, no, boy, we don't need money, we will do it. We are happy to do for you. He said, no, today I give you money. Next time I will not give, but now today I give you money. कोई छोटा होटल था वहां डाकू को देख करके वो तो बेचारे घबरा गए. अरे वो राक्षस कटवा गयो. घोड़े से उतर के आके बोला कि 2 किलोमीटर दूर महात्मा बैठा है खेजड़ी के नीचे, भोजन कराना है और ये पैसे ले. तो बोला पैसे नहीं चाहिए, हम सेवा कर लेंगे. क्या नहीं, आज तो मैं पैसा दूंगा ही, दूसरी बार आएंगे नहीं लेंगे. जाओ बढ़िया से बढ़िया भोजन बना करके खिला करके आ जाना बस. वेल दे वेंट, दे टुक द फूड and they went to Babaji. Babaji saw some person is coming with the food. Aao Bhakta, come welcome Bhakta, what is your name and what are you doing? He said, I have a little restaurant. All right. Prabhu, would you accept my food? Said, yes. तुम कौन हो? कि मैं छोटा मजदूर हूं, रेस्टोरेंट है. अच्छा प्रभु, हम आपके लिए कुछ प्रसाद भोजन लाए, खाइए. खिलाओ बेटा, खा लिया. While eating his buddhi changed. Now if you drink slowly slowly glass milk, you become nice, happy and relaxed.

but you drink slowly, slowly vodka or whiskey. After half glass, you feel here zzzz, the bees inside. Huh? Now the Maharaj is thinking, Babaji, आज तो कहीं गांव में जाना चाहिए, जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए. अरे जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए, अब तो कहीं गांव में जाना चाहिए, भक्तों को कुछ दर्शन कर देना चाहिए. बोरिंग सिटी अंडर द ट्री सो मेनी इयर्स, नाउ आई शुड गो टू सम विलेज एंड गिव सत्संग. केम There was a beautiful small Shiva temple near the village, very near, close. He asked the Pandit Pujari if there's a room. They said, yes, there's one room for sadhus to stay. He stayed there. Evening prayer, and he came to prayer. There was a beautiful Shiva statue, not only Shiva Lingam, made out of gold. Now the food of the bandit is working in his blood. They were making prayer and he was hypnotized by statue, gold, gold. Many years he didn't see any gold. Now he decided to steal the Shiva statue. How to take away? Trick. All people went to sleep. And 2 o'clock, he woke up, went to Shiva's temple, and statue was very strong, tied, fixed by good worker, a good engineer like Yogesh, you know. You can't move. So Babaji took this statue like this and he was doing half hour like this. My Lord Shiva, come to me. Come here, my dear Lord Shiva. In my heart I made temple for you. Moving. Come on, Lord. Move up, move up. Statue came out. Sweating, tired, blue spots. Took it and went away. Hari Om. Babaji gaav ke andar aaye. Dekha ki Shankar ka mandir, pujari ko kaha ki rehne ke liye jagah hai, ki ye kamra hai. साधुओं के लिए वहां रुक गया. श्याम को आरती में आए. भगवान शिव की बहुत सुंदर एक मूर्ति थी, सोने की, करीब 5 किलो की. आरती हो रही थी, सोना चमक रहा है. बाबा जी तो देख करके पागल हो गए कि जिंदगी में इतना सोना कभी देखा ही नहीं. कितना जल्दी इसको लेके चला जाऊं, पार करें. रात के 2 बजे बाबा जी उठ करके मंदिर का दरवाजा का ताला तोड़ करके अंदर गए और मूर्ति को पकड़ के, बहुत मजबूत काम था योगेश जी की तरह, लेकिन बड़ी मुश्किल से मूर्ति को जैसे तैसे निकाला और 3 बजे लेके बग गया. 2:30 बजे पुजारी पूजा कर, 3:30 बजे पूजा करने को आया, देखा कि मूर्ति है ही नहीं. घंटी बजाई जोर जोर जोर से, तो गांव के लोग दौड़ करके आए. 3:30 द पंडित जी केम फॉर पूजा. टेम्पल डोर वॉज ओपन. शिव जी वॉज नॉट देयर ऑन द अल्टार. ही रेंग द बेल लॉन्ग. And the village people were running, coming, what happened? Strong people like Jasraji and Premananji, and they were running. Came, what happened, Panditji? Statue is stolen.
Do you know anybody? I don't know any. If I stay anybody here, one sadhu is staying in the room. They went there, there is no sadhu. They took the torch light, they saw the steps running. That time was no concrete, Sisi road, you know. There was only sand road. Sandy road, so young people were running, and Babaji had a Shiva statue and running. सभी गांव के लोग आए देखा कि शिव जी की मूर्ति चुरा गई पंडित बोला कि गई का पता नहीं किधर कोई यहां आए थे क्या बोला एक महाराज रुके हुए और कोई नहीं है जाके देखा कि कमरे में महाराज जी भी नहीं बैटरी से देखा कि वहां पैरों के चिन्ह मंडे हुए उस समय ये सीसी रोड डामर की रोड होती नहीं थी किधर भगा देखा उनके पैरों के चिन्ह तो बहुत से लोग उधर जवान लोग दौड़े जाते जाते चार बज रहे थे और प्रभात हो गया भोर हो गया क्या नहीं उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो सोवत है वो खोवत है गाते हो कि नहीं

पाव। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहा जो सोवत है। प्रकाश होने लगा, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्ता, बाबा जी जा रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो लोग भी दौड़ रहे हैं, बाबा जी भी मजबूत थे। बाबा जी ने देखा पीछे की फौज आ रही है, अब क्या करे। लेकिन दौड़ने से करने से बाबा जी का वो डाकू का चोर का खाना खाया था ना अन्न, वो पच गया, पसीने से पच करके निकल गया और वापस सद्बुद्धि आ गई। अब बाबा जी सोचे कि कहूंगा कि मैं चोरी करने को आया, तब तो रिपेयरिंग हो जाएगी। हा तपस्या टीज पूरी। देखा भाग्य सेवा एक तालाब था, पानी की झील, सुंदर निर्मल जल। दौड़ करके गए पानी की झील के अंदर, डुबकी लगाई और मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो आए गए डाकू चोर कि बोला चुप रहो, जल्दी आओ, तुम भी लाभ ले लो, स्नान कराओ। रात को शंकर भगवान मेरे पास आए कि कई बरस हो गए मुझे स्नान नहीं कराया, मेरे को तो पानी की झील में नहाना है। हे भगत, तू ही मुझे समझता है, दूसरे गृहस्थी नहीं समझते, आ तू जल्दी कर, स्नान कराओ। दिन उदय होने से पहले पहले जाकर के भगवान को वापस सिंहासन में बिठाना, चलो बेटा जल्दी आओ। सब कहते हे महाराज बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव की जय हो। मूर्ति को स्नान करा करके लेके आके रखा और आरती बोली, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश, बच गया, बुद्धि वापस आ गई। तो व्हाट हैपन, ही टुक द एंड रन अवे द यंग पीपल फ्रॉम द विलेज, दे वर रनिंग बिहाइंड। Dawn came and that Babaji looked behind, they are running some bodybuilders. Now what to do? If I will tell, Babaji is thinking, that I have stolen the statue, then today they will repair my mind. What to do? What to do? Lord help me. But while running, while hard work, sweating, and so many hours already, nearly 18 hours after eating, that the food of the thief was digested and sweated out. Again, normal intellect appeared. What to do? Luckily, there is always luck in bad luck. There was a beautiful lake. So he ran into the lake and began to bath the Lord Shiva. And people came, thief, thief. He said, stop, silent, don't talk. Lord Shiva came in the night to me and said, so many years I did not bath. The village people present me in the temple. Please, Swamiji, can you help me to bath? So I promised him, before sunrise, we will bring you back to your holy place. So come quickly, wash him. Namah Shivaya, Harar Gange Mahadev, Harar Gange. Gange, Gange, Harar, Bhole, Shambhu, come on. Whoever was giving water, washing the Shiva, running back and brought Bhagavan Shiva statue, fixed there and begins to do aarti.

से प्रेम का प्याला प्रभु कब मेरा। गुरु जी सेड देयर इज अ नेवर एंड फ्रॉम दिस डिवाइन नेक्टर डिवाइन लाइट एंड इज सो स्ट्रांग। सो आई सेड गुरु जी कैन आई गिव यू वन सजेशन। गुरु जी सेड यस। आई सेड देन डोंट इमेजिन महाप्रभु जी हियर इन आज्ञा चक्र बिकॉज यू गिव टू मच टेंशन हियर। गो इन द हार्ट एंड हैव हिम इन द हार्ट। ओके व्हाट गुरु जी सेड। ओके नेक्स्ट डे व्हेन आई केम गुरु जी सेड महेश यू कंफ्यूज्ड एवरीथिंग। I said, what? I transport Mahaprabhu ji from Agya Chakra to Anaha Chakra. Now, the settlement from transport from Jadan to Khatu is not so easy, you know. You have to make many things. So today, I was nearly confused. I mean, Agya Chakra or Anaha Chakra or Agya Chakras? But I asked him, have you the headache? He said, no headache, but confusion. Better I should have a headache than such a feelings. So, but after some time, Guruji said to some people, Mahesh have transferred Mahaprabhuji from Agya Chakra to Anahad, from Agya Loka to Anahad Loka. But he said he have still his sabi. Then what he said, he held the lotus feet of Mahaprabhuji in the heart and his divine light in his Agya Chakra. Very different seva, different things. Then Guruji said when he was doing the Mansik Puja, how from the beginning, early morning when Mahaprabhuji got up and all sevas what Guruji did, he was doing exactly the whole seva 1 hour. Well, meditation. We need to purify our panchkosha. And this is a anamaya kosha, only what I am telling you. Jaisa khayega ann, vaisa rahega man. Agar koi papi ka ek bhi dana aa gaya, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग दिया जाता है। मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करते क्या लगता है मेरा। हे प्रभु, हमें महाप्रसादी ही दीजिए, ब्रह्मा अर्पणम। हम अर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, भगवान का दिया हुआ भगवान को चढ़ाते हैं, फिर बाद में जो होता है हम लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वृत्ति है या ऐसी कोई ऐसे प्राण उसके अंदर हो, उस अनाज के अंदर, तो वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। एक बार गुरुजी ने कहा कि महेश मेरे सिर दर्द हो जाता, अभी पता नहीं ध्यान करता, तो 3-4 बार गुरुजी फरमाए बोला। तो मैंने कहा कैसे करते आप ध्यान? तो गुरुजी ने कहा कि यहां बाप महाप्रभु जी की सभी विराज रहे हैं और मैं मेरे महाप्रभु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर जो प्रकाश अमृत निकलता है उसका पान करता हूं और उसी के आधार पर मैंने भजन भी लिखा। महाप्रभु जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि वो इतना आनंद है कि उसका कोई पार ही नहीं है। तो वो कब पूर्ण होगा, वो कब भरेगा? तो बाप जी ने वो भजन लिखा कि प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भर से, ये मेरा प्रेम रूपी प्याला जो है प्रभु कब पूर्ण हो जाएगा, कब भर जाएगा? तो मैंने कहा महाप्रभु जी को यहां से अब हृदय चक्र में ध्यान कराओ आप।
दूसरे दिन आया तो बाबू जी कहते मेरे तो है तो गड़बड़ कर दी मैं, क्यों कि महाप्रभु जी का ट्रांसफर कर दिया अनाहत से आज्ञा से अनाहत, और सब मेरी वृत्तियों का ध्यान का वो। मैंने कहा हो तो वापस वैसे ही करें आप। बोला नहीं नहीं अब ट्राई करूंगा इधर भी। तो ध्यान की विधि होती है, महापुरुषों को ये अनुभव होता है, गुरु जी को होता था, और हम लोग जो ध्यान करने को बैठते हैं तो क्या होता है, चलो लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र बोलते, काम पे तो जाना है ही है, वो इतना आदमी इतना बेकार है, वो पैसा ले गए वापस देने का सोच नहीं रहा है। खैर बच्चों की शादी भी करनी चाहिए। अब ध्यान कर रहे हो कि ये वृत्ति विचार कर रहे हो, इसलिए कहा है कि हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा हमारी चेतना के अंदर चित्त के अंदर जो वृत्तियां विचार चल रहे हैं इनको निरोग नहीं करेंगे, निरोध नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं जब तक हम हमारे अगले गंतव्य या अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वृत्ति का निरोध करने के लिए अतः योगानुशासनम अनुशासन जीवन जीना पड़ेगा, अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है, अनुशासन ही परिवार को मजबूत, समाज को मजबूत, और अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। जहां अनुशासन नहीं रहा वहां सब मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव का ये भजन जब मैं गाता हूं तो बाप जी की वो मनोहर सभी सामने आती है, मुस्कान आती है, और कहते हैं कि तुमने महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया। मैंने कहा बाप जी ट्रांसपोर्ट नहीं किया। तो डॉक्टर शांति विल सिंह नाउ दिस भजन, प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भर से, दीप नारायण भगवान की। तो टुडे आई स्पोक अबाउट अन्नमया कोशा, टुमारो लेट्स कम टू द प्राणमय कोशा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच, दिस आर द फाइव डिफरेंट चैम्बर्स, विद इन दिस फाइव इज दैट जीवात्मा एंड आत्मा दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड, देन दिस रेडियंस द रेजोनेंस, व्हेन दिस इज प्यूरिफाइड then you are beyond this all material vibrations, from you is only divine radiance is coming, and anyone who comes closer, sits around you, go around the temple, you are in this abhamandal inside. Deep Narayan Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev ki, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की।